आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

बोलो मखना वाली दी जय, और बोलो साथ में अपनी भी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं घरवा

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: एक दूल्हा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: सर्जन?
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ, हाँ।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 5 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: यह कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंदरा मस्ती। कल रविवार संडे स्पेशल में सुनिए स्टार गीत मस्ती, पार्टिसिपेट कीजिए लाइव शो में और कीजिए दिए गए उल्टे पुल्टे और रिवर्स गानों को सीधा और भेजिए इस मैजिकल नंबर पर जो है 91-35-84-12-32। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बज जाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का अंतरा मस्ती का ये मस्ती भरा शो। फिलहाल मेरे पसंद के गाने को एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और दोस्त बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और सबसे पहले जुड़ने वाले मैं बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे सरफराजी सरफू भाई साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, उनके बाद मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। सर्वेश भगा जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। इमरान भाई जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। नाहिद अंसारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। एंड सरबजीत सेठी जी वेलकम है। एम डी फैज जी, दिगंबर जी, नंदनी माँ जी, बी के पंत जी, गजानन सुनकार जी, सभी का वेलकम करते हैं। और यानी कि प्रियंका जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। और सभी दोस्तों का वेलकम।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंदरा मस्ती। कल रविवार संडे स्पेशल में सुनिए स्टार गीत मस्ती, पार्टिसिपेट कीजिए लाइव शो में और कीजिए दिए गए उल्टे पुल्टे और रिवर्स गानों को सीधा और भेजिए इस मैजिकल नंबर पर जो है 91-35-84-12-32। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
0: वेलकम बैक दोस्तों। एक्चुअली आज नेटवर्क बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, शायद हो सकता है कि आपको रेडियो हॉटस्टार पर सही से सुनने को न मिले, लेकिन रेडियो गाना पर बिल्कुल सही सुनने को मिलेगा, क्योंकि रेडियो हॉटस्टार का नेटवर्क बहुत ही 2-3 दिनों से डिस्टर्ब कर रहा है। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लगता है कि मुझे फिर से दोबारा कंप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन मैं अंतरा मस्ती का आगाज कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले इस गाने के साथ, और इस गाने से स्टार्ट हो रहा है आज का अंतरा मस्ती।

और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे आदरणीय गजन सलोकार जी की साहबजादी यानी कि वैष्णवी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और महेंद्र मोदी जी के भी साहबजादे का जन्मदिन है, आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, आप दोनों और अपने माता पिता का नाम रोशन करो।

तो यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। तो इस अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेजे 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे।

0: चुरा लेंगे।
1: बिल्कुल, और बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले सर्वजीत सेठी जी, क्या बात है। नाहिद अंसारी जी, सुनीता गोप जी, फैज जी, आरती जी और प्रियंका जी, और सर्वेश भगत जी, गजानंद जी और सुनील कुमार जी, अशोक पाल जी, भारती पटेल जी और राधा कृष्ण गोप जी, मतलब सभी का वेलकम करते हुए और कॉल लगाते हैं सीधे हमारे सर्वजीत सेठी जी को। एमडी महमूद आलम जी जुड़ चुके।

0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और क्या हाल है फाजिल का, पंजाब का?
1: बस बारिश हुई है सर दोपहर को।
0: बारिश हो गई है ना, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, है कि नहीं?
1: जी सर जी।
0: तो अंतरमस्ती का आगाज आज आज आज आपने ही किया है, और ज्योति जी रहती हैं तो ज्योति जी हमेशा नंबर वन आती हैं, पता नहीं लेकिन अभी तो उनके यहाँ कुछ ऐसी मतलब मुसीबत पड़ी है कि वो तो आज नहीं है, है ना? लेकिन खैर कोई बात नहीं है, ये तो मतलब क्या बोलते हैं
1: जो परमात्मा जी जी वो लिखा जो,
0: हाँ वो तो होकर ही मतलब उसे कोई यानी कि टाल नहीं सकता है कि नहीं?
1: जी सर। और सर मुझे पूछना सर आपसे कि प्रोग्राम आएगा सोमवार से आपके जो?
0: नहीं, मेरा प्रोग्राम यानी कि 5 दिन तक नहीं आएगा, यानी कि सोमवार मंगलवार बुधवार और जुमरात और जुम्मा तक मैं नहीं हूँ, है ना? मैं फिर अंतरमस्ती के दिन ही आऊंगा। ओके
1: कोई प्रोग्राम नहीं आएगा फिर इसके?
0: नहीं, अतवार को मैं आऊंगा, अतवार को रहूंगा। कल यानी कल मेरा 2 प्रोग्राम होगा, एक 11 बजे से होगा यानी सुबह, और एक शाम को 6:30 बजे से होगा, 2 प्रोग्राम कल होंगे। ठीक है, लेकिन
1: सर
0: यानी कि अतवार को कल मेरा प्रोग्राम होगा, अतवार के बाद मैं सीधे आऊंगा अगले सैटरडे को अंतरमस्ती में। ठीक है
1: जी सर।
0: ओके, तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: सर तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं।
0: तो थोड़ा गुनगुना दीजिए।
1: सर नहीं गुनगुना।
0: कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए, सुना दिया और हम भी इंतजार कर रहे हैं।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। इस अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेजें। सिर्फ आपको व्हाट्सएप करने हैं 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे भेजने हैं।

और मैं क्या करूं यार, दोनों जगह नेटवर्क बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे पास जो सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है, किन का पहुंचा हुआ है जरा देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे पहुंचा हुआ है मेरे पास MD फैज आलम जी का, उनके बाद है S खानम जी है, और संजय साहनी जी है, नाहिद जी है, और यहाँ पे अर्जवंशिका जी है, और अस्मिता गोग जी MD महमूद आलम जी जुड़े हुए हैं, वेलकम है। राधा कृष्ण गोग जी है, और प्रियंका जी है, सुनील कुमार जी, सर्वेश भगत जी, गजानंद जी, बीके टेलर जी है, भारती पटेल जी, मतलब बहुत से दोस्त हैं, लेकिन सीधे कॉल लगाते हैं इन्हीं को, हमारे MD फैज आलम जी को।

जी आपको कॉल किया था लेकिन आपने कॉल आपका कॉल मुझे यानी लग ही नहीं पा रहा था। बताइए कैसे हैं फैज जी। हेलो हेलो हेलो, आवाज भी नहीं आ रही है।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। इस अंतरे में शब्दों से आप गाने लिख के भेज सकते हैं मुझे 9135841232 पे। और हाँ, जिन्हें कॉल रिसीव नहीं करना है वो ये जरूर लिख के भेजे कि नो कॉल, और स्टार्टिंग में लिख दे मुझे प्लीज।

बिल्कुल, मैंने तुझको सनम चुन लिया। और वैसे मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा अकबर खान जी का और सुनील कुमार जी का, नाही जी का और हमारे संजय सानी जी का, एमडी आलम जी हैं और सुनीता गोप जी हैं, राधे कृष्ण गोप जी हैं, एमडी फैज आलम जी हैं और प्रियंका जी हैं और सर्वेश भगत जी, भारतीय पटेल जी, बीके टेलर जी हाँ और गजानंद सरवजी सेठी जी, मतलब बहुत से दोस्त हैं। कॉल लगाते हैं सीधे अकबर खान जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम है आपका अकबर खान जी अंतरा मस्ती में, कैसे हैं?
1: एकदम अच्छा हूँ, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, और बताइए, तो एकदम बिल्कुल सही सलामत घर पहुँच गए?
1: बिल्कुल सही समय पर पहुँच गया जी।
0: चलिए अच्छी बात है, और आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है।
1: ये है फिल्म दीवाना का जी, पायल या हो।
0: तो आप तो गुनगुनाते हैं ना, आपको तो गुनगुनाना आता है तो गुनगुनाइए ना।
1: ये क्या हो ना, मुझे याद भी नहीं है थोड़ा सा, ये बोली याद था।
0: अच्छा ठीक है, चलिए सुनवा दिया, कोई बात
1: फिर भी थोड़ा सा करता हूँ।
0: ओके ओके
1: धन्यवाद।

0: मेरे पास इस पर सबसे पहले मैसेज आया हुआ है रुबीना नाज जी का और गजानन सलोकार जी का और सुनील कुमार जी का, नाहिद अंसारी जी का और संजय साहनी जी का, राधा कृष्ण गोप जी का, सुनीता गोप जी का, भारती पटेल जी का, दिगंबर जी का, अकबर खान जी का, बीके टेलर जी का, एस खानम जी का, सर्वेश भगत जी का, फैज जी का और जितेंद्र जी का, सर्वजीत जी का, विष्णु जी का, मतलब संजय पटेल जी का, बहुत है बहुत है बहुत है, कितना कितना नाम, नो प्रॉब्लम, सीधे कॉल लगाते हैं रुबीना नाथ जी को। बहुत बहुत वेलकम है रुबीना नाथ जी अंतराम मस्ती में। वालेकुम अस्सलाम, और कैसी तबीयत है? लग रहा है कि तबीयत आपके नसाज है।
1: नहीं नहीं ठीक है।
0: ठीक है ना
1: तबीयत?
0: अच्छा चलिए अच्छी बात
1: है।
0: तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाई है?
1: गाना है आँखों में नींद देना दिल में करार।
0: नहीं नहीं नहीं, आपने जो गाना भेजा वो मुझे बताइए।
1: वही है शब्द से आँखों है।
0: आपने तो कुछ और लिखा था, क्या लिखा था?
1: रुकिए एक सेकंड, एक सेकंड।
0: आपने गाना एडिट कर दिया है, आपने इससे पहले लिखा था लिखा है ये दीवारों पे, उसके बाद से आपने गाना एडिट कर दिया है। कोई बात नहीं है, अगला मैं कॉल लगा लेता हूँ। हमारे अगला कौन थे? गजानन सलोकार जी थे, उनको कॉल लगाते हैं। गजानन जी
2: नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत वेलकम है आपका, और बताइए कैसे हैं?
2: बस आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ सर जी।
0: आपकी साहबजादी को जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: ओके जी, तो अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं?
2: तेरे नाम का दीवाना।
0: अच्छा,
2: तेरे घर को ढूंढता हूँ, ये गीत है सर।
0: ओके, तेरे नाम का दीवाना। ओके, एंजॉय कीजिए, गाने को प्ले कर दिया है।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। तो इस अंतर में ऐसे शब्दों से आप मुझे गाने लिख के भेजिए 9135841123 पे, यानी 9135841232 पे। और नंदलाल जी जुड़े हुए हैं, वेलकम करते हैं आपका नंदलाल जी।

0: वैसे नेटवर्क बहुत इशू कर रहा है और एक्सट्रीमली सॉरी। फिलहाल अगला जो मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है वो किनका पहुंचा है जरा देखना पड़ेगा। ये है सुनील कुमार जी, ओके। और उनके बाद हमारे गजानन सरोकार जी हैं, नाहिद जी हैं, एंड यहाँ पे संजय सानी जी, अकबर खान जी, और सुनीता गोपी और राधा कृष्ण गोपी, भारती पटेल जी और प्रियंका जी, एमडी आलम जी मतलब महमूद आलम जी, और जितेंद्र जी, बीके टेलर जी, एस खानम जी हैं, और एमडी फैज जी हैं, और सर्वेश भगत जी हैं, और विष्णु जी हैं, और यानी कि पूजा भास्कर जी हैं, और हमारे यहाँ पे सर्वजीत शेट्टी जी हैं, दिगंबर जी, मतलब बहुत सारे दोस्त हैं। तो सीधे कॉल लगाते हैं सुनील कुमार जी को, बांका बिहार। सुनील कुमार जी
1: नमस्कार।
0: बड़ा जल्दी मैसेज भेज रहे हैं, क्या बात है?
1: क्या करें सर, कभी कभी नेटवर्क गड़बड़ करता है ना, इसीलिए पीछे रह जाते हैं। तो आज थोड़ा सा फास्टिंग चल रहा है।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: ओके जी। तो आज बताइए कि अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाए हैं?
1: ये आवाज हमारी इसी वादी में रहेगी, हमको ना भुलाना कभी, हमको ना भुलाना।
0: क्या बात है, इंजॉय कीजिए, सुनवा दीजिए।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतर। इस अंतर में आए शब्दों से गाने लिख कर भेजिए मुझे 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे।

वेलकम बैक। और मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचेगा आरजे सोनी जी का, उनके बाद यानी प्रियंका जी हैं, और प्रियंका जी के बाद नाही जी हैं, और राधा कृष्ण गोप जी हैं, और अकबर खान जी हैं, और सोखन विश्वास जी हैं, एमडी फैज आलम जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, पूजा भास्कर जी हैं, और सरवेश भगत जी हैं, संजय सानी जी, विष्णु जी, गजानंद जी, भारती पटेल जी, और बीके बीके टेलर जी, मतलब बहुत से दोस्त हैं, कॉल लगाते हैं।

0: बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में आरजे सोनी जी, कैसी हैं आप?
1: मस्ती में आरजे सोनी जी, कैसी हैं आप?
2: जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, और शायद रेडियो ऑन है आपका?
1: रेडियो ऑन है आपका?
2: नहीं, वो तो ऑफ हो गया, कॉल आया था।
0: अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। फिलहाल अच्छा, मेरी आवाज आ रही है इसीलिए मैंने कहा। तो बताइए कैसी हैं और क्या कर रही हैं?
2: फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं।
0: बैठे हुए हैं तो ठीक है, तो खड़े हो जाइए।
2: ठीक है, खड़े होकर बात कर रहे हैं।
0: हाँ, कोई बात नहीं। चलिए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना सुनकर लाई हैं आप? हेलो
1: हेलो
2: जी,
0: अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना सुनकर लाई हैं?
1: कौन सा गाना सुनकर लाई हैं?
2: होठों पे बस तेरा नाम है,
0: तुझे चाहना मेरा काम है। एंजॉय कीजिए
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम जी।

0: और यहाँ शुरू हो रहा है अंतरा। तो इस अंतर में शब्दों से गाने लिखकर भेजिए मुझे 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है आपको।
1: ये रात सोई है कोई।

वेलकम बैक। मेरे पास इस बार सबसे पहला यानी प्रियंका जी का मैसेज आया हुआ है, उनके बाद नाहिद जी हैं, अच्छा अब दो नंबर पे आ गई हैं, और उनके बाद है आरजे वंशिका जी और सुनील कुमार जी और संजय साहनी जी और कोकन विश्वास जी, अकबर खान जी, राधा कृष्ण गोप जी, सुनीता गोप जी, फैज जी, सर्वजीत सेठ जी, सर्वेश भगत जी, संध्या पटेल जी, पूजा भास्कर जी, रवि मौर्य जी, गजानन सुरकार जी, दिगंबर जी, मतलब बहुत से दोस्त। सीधे कॉल लगाते हैं प्रियंका जी।

0: वेलकम वेलकम वेलकम इन प्रियंका जी, अंतरा मस्ती में कैसी हैं आप? हेलो
1: हेलो, बढ़िया अच्छी।
0: अब आवाज आ रही है मेरी?
1: आवाज आ रही है ना आपकी?
0: हाँ जी, बताइए। और तो बहुत देर से आप ट्राई कर रही हैं, अभी आपका नंबर लग गया।
1: लग तो गया।
0: ओके, तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाई हैं आप?
1: मिस्टर इंडिया मूवी, काटे नहीं कटती दिन ये रात।
0: नहीं, जो आपने भेजा है नीचे।
1: मुझसे वो वाला गाना है ना, रात पाऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, वो वाला सॉन्ग सुना।
0: ओके, एंजॉय कीजिए, सुनवा। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे दिलबर आलम जी, वेलकम करते हैं।

और यहाँ से शुरू हो रहा अंतरा। अंतरा में शब्दों से गाने लिख के भेजे मुझे 91358412322 पे, यानी 91 35 84 12 32 पे।

0: बहुत बहुत वेलकम है नाहिद अंसारी जी अंतरा मस्ती में। वेलकम सलाम। और कैसी हैं?
1: अच्छी हैं, आप बताइए।
0: अरे हम तो एकदम झकास बिदास फर्स्ट क्लास मजे में चक्का चक हैं जी।
1: अच्छी बात, रहना भी।
0: हाँ जी, तो अंतरा के शब्द

और यहाँ से शुरू हो गया है अंतरा। अंतरा में आए शब्दों से गाने लिखकर भेजे मुझे 9135841232 पे, यानी 91 35 84 12 32 पे।

और इस बार मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है एस खानम जी का। ओके जी, और एस खानम जी के बाद आरजे वंशिका जी हैं, और एमडी फैज जी हैं, और प्रियंका जी हैं, जितेंद्र जी हैं, एमडी आलम जी हैं, और यहाँ पे सर्वेश भगत जी हैं, और सुनील कुमार जी हैं, दिगंबर जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, सर्वजीत सेठी जी, बाबूलाल अंजना जी, राधा कृष्ण गोप जी, भारती पटेल जी, और दिलबा आलम जी, और संध्या पटेल जी हैं, और पूजा भास्कर जी, खोखन बिस्वा जी, मतलब बहुत से दोस्त हैं। सीधे गाना प्ले करते हैं इनका, क्योंकि इनको कॉल नहीं करना है। और नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, सभी दोस्तों से मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी गलती नहीं है।

ओके जी, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे नाम भी बोलना है। मैं तो गाने में इतना खो गया था कि मैं क्या ही बताऊं। सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया हुआ है यहाँ पे आरजे वंशिका जी का, और उसके बाद यानी कि प्रियंका जी हैं, नाहिद जी हैं और

0: मीरा भास्कर जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी और सीधा कॉल लगाते हैं आरजे वंशिका जी को। आरजे वंशिका जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है अंतर मस्ती में।
1: जी जी नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, और कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, अभी बारिश में भीग के आ रही हूँ।
0: मतलब बारिश में कहाँ गई थी कि भींग गई हैं?
1: जी बाहर गए थे और बारिश हो रही थी, तो वहाँ पे सामान उठाते उठाते भीग गए हम भी।
0: ओह क्या बात है, तब बारिश का आनंद लीजिए और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दी इसी बहाने। तो बताइए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाई हैं आप?
1: जी अजीत सिंह जी की आवाज में है, दिल को मैंने दी कसम ना धड़के तेरे बिना।
0: ओके, एंजॉय कीजिए, सुनवाइए।
1: थैंक यू सो मच।

वेलकम बैक। और यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास मैसेज पहुंचा है और ये यहाँ पे खोखन विश्वास जी का पहुंचा हुआ है। सबसे पहले खोखन विश्वास जी के बाद है हमारे यानी नाम उनका विष्णु चंद्र जी। अच्छा, और उनके बाद यहाँ पे यानी कि प्रियंका जी हैं, नाहिद जी हैं और कमल शंकर पांडे जी हैं, एमडी फैज जी हैं, रवि मोहरे जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, अनिल मेहता जी हैं, रूपचंद जी हैं, अकबर खान जी हैं और नगीना जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं। तो सीधे कॉल लगाते हैं और कोकर मिश्रा जी को।

0: खोखन विश्वास जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है अंतरमस्ती में।
1: हेलो
0: जी खोखन विश्वास जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरमस्ती में। कैसे हैं?
1: ठीक है सर, आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो बहुत ही अच्छे हैं।
1: और सर
0: बताइए
1: बताइए, बहुत दिन बाद
0: आप बहुत दिन बाद आ ही रहे हैं। करीब 6-7 महीने बाद तो आप खुद आ रहे हैं, पता ना कहाँ गायब हो गए हैं।
1: जी जी जी, थोड़ा काम के सिलसिले में थोड़ा बाहर चले गए थे तो
0: अच्छा
1: वहाँ टाइम नहीं मिल पा रहा था,
0: तो
1: बाकी मैं सुनता रहता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: किसी बात नहीं है।
0: तो अभी तो वापस आ गए हैं ना?
1: जी जी जी, आप आ गए हैं, अब लगातार हम प्रोग्राम सुनेंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे।
0: चलिए वेलकम है आपका एक बार फिर से। तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप? हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद मेरा नेटवर्क इशू है या जो भी हो। इधर तो अभी फिलहाल
1: नहीं, अब आ रही
0: है। हाँ आवाज आ रही है। अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: गाना सर मैंने आपने चुना है, तुझ पे रब दिखता है यारा मैं क्या करूं।
0: सुनवा दिया,
1: रब ने बना दिया।
0: धन्यवाद।

वेलकम बैक। और मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी का। राधा कृष्ण गोप जी के बाद है आरजे वंशिका जी और नाहिद जी और प्रियंका जी, एस खानम जी और नाजिम जी। लिखते हैं कि जब सॉन्ग प्ले होता है तो आप बोलते हैं तो एक मिनट बाद प्ले होता है और वहाँ हाँ एक बार स्टॉप करके यानी कि प्ले कीजिए, हो जाएगा शायद, हो सकता है। और सर्वजीत सेठी जी हैं, एमडी फैज जी हैं, अनिल मेहता जी हैं, जितेंद्र जी हैं, दिलबर आलम जी हैं और हमारे इमरान भाई जी हैं और ओके इमरान भाई जी हैं और सुनीता गोप जी हैं और अकबर खान जी हैं और विष्णु जी हैं, रूपचंद जी हैं और कमल शंकर जी हैं, संध्या पटेल जी और पीकू राय जी हैं। जी वेलकम है आपका। भी तो कॉल लगाते हैं सीधे राधा कृष्ण गोप जी।

0: राधा कृष्ण गोप जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और कैसे हैं? जी प्रणाम प्रणाम। बोलिए कैसे हैं?
1: ठीक है सर, मस्त है।
0: मस्त है ना?
1: जी सर।
0: अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन कर लाए हैं?
1: रंग भरे मौसम से रंग चुरा के।
0: ओके, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।

और इस पर सबसे पहले मैसेज पहुंचा है एक बार फिर से आरजे वंशिका जी का और सुनीता गोप जी और नाहिद अंसारी जी, सर्वजीत सेठी जी, एस खानम जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी और कमल शंकर जी हैं, और अखोकर विश्वास जी, भारती पटेल जी, एम डी फैज जी हैं, और यानी कि प्रियंका जी हैं, और पीकू राय जी हैं, जितेंद्र जी हैं, और सर्वेश भगत जी हैं, विष्णु जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं।

0: बार फिर से बहुत बहुत आपका वेलकम है आरजे वंशिका जी।
1: जी थैंक यू सो मच।
0: वेलकम जी। तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना सुनकर लाई हैं आप?
1: मेरे मन का मौसम बदलने लगा है तेरे नाम से, ये वाला गाना सुना चाहिए।

और मेरे पास सबसे बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, लेकिन सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है एस खानम जी का। लिखिए नो कॉल लेकिन मासूम चेहरा सुनना चाहती हैं। और लाहिद जी हैं, अकबर खान जी हैं, एमडी फैज जी हैं, और प्रियंका जी हैं, और सर्वेश भगत जी हैं, सर्वजीत सड्डी जी हैं, जितेंद्र जी हैं, बीके टिलर जी हैं, अरूप चंद जी हैं, राधा कृष्ण भोग जी, खोकर विश्वास जी, कमल जी हैं, और विष्णु जी हैं, और ओ माय गॉड। कोई बात नहीं, तो यहाँ इनका गाना मैं प्ले करता हूँ, मासूम चेहरा। शायद इनके ख्याल से फीमेल वर्जन ही सुनवाता हूँ, वैसे तो मेल वर्जन भी है।

वेलकम बैक। और इस बार मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है आरजे सोनी जी का। ओहो क्या बात है, आरजे सोनी जी और इनके बाद है यानी कि पीकू राय जी। अच्छा ये भी जुड़े हुए हैं और यहाँ पे आरजे वंशिका जी भी हैं और अश्विता गोप जी हैं, एस खानम जी हैं और प्रियंका जी हैं, एम डी फैज जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं, जितेंद्र जी हैं सब है और सर्वेश भगत जी, खोखन विश्वास जी, सर्वजीत जी और विष्णु जी, भारती पटेल जी और संध्या जी, विकेट टेलर जी, दिगंबर जी, मतलब बहुत से दोस्त।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आरजे सोनी जी। और क्या बात है, गाना चुन चुन के लाती हैं आप। बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई इस बार?
1: दिल दीवाना बिन से गुनाह को माने।
0: हाय क्या बात है, ओ एंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके, और मैंने गलत गाना प्ले कर दिया है। ओहो

0: और ये रहा आज का पहला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में, रेशमी दुपट्टा फेंका पीन के हुलारे में, मेले में अकेले बीच बाजार सारे में, कौन सा बनाया ना बहाना बहाना बहाना।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

0: इस बार नाहिद जी के मेरे पास सबसे पहले मैसेज आया हुआ है, और अब प्रियंका जी हैं, बीके जी हैं, और प्रमोद जी हैं, पूजा भास्कर जी हैं, मोहन विश्वास जी हैं, साथ ही साथ यहाँ पे रूपचंद जी हैं, एमडी फैज जी हैं, अकबर खान जी हैं। ओके तो कॉल लगाते हैं। हाँ जी नाहिद जी, एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है सेकंड राउंड में, कैसी हैं?
1: थैंक यू,
0: अच्छी हूँ। ओके जी, तो अब क्या जी? मैं ठीक हूँ, जरा सा मुझे जवाब बता दीजिए, कौन सा गाना है?
1: गाना है मजे टाइम मिला पगला दीवाना।
0: बिल्कुल सही जवाब है। और गाना कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: गाना है जीना बनना तेरे संग, तुमसे है कितना प्यार,
0: तुमसे है कितना प्यार। ओके, इंजॉय कीजिए।

0: रहा अगला सवाल,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। गर्म है, तेज है ये निगाहें मेरी, काम आ जाएंगी सर्द आहें मेरी, तुम किसी राह में तो मिलोगे कहीं, अरे इश्क हूँ मैं कहीं ठहरता ही नहीं, मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो।

वेलकम बैक। और मेरे पास सबसे पहला सोनू गौतम जी का मैसेज पहुंचा हुआ है और हुकुम चंद जी हैं। इनका बिल्कुल जवाब सही है और किनका जवाब सही है, दो ही जवाब सही है। ओ माय गॉड, बाकी सभी का गलत है। कोई बात नहीं, सुनते हैं क्या कहते हैं।

0: सोनू गौतम जी बहुत बहुत बधाई हो। सिर्फ दो दोस्तों के जवाब बिल्कुल सही पहुंचे, बाकी सभी दोस्तों का जवाब गलत गलत गलत पहुंचा हुआ है। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
1: कैसे हैं अमन सर?
0: अरे मैं ठीक हूँ, आप बताइए सोनू गौतम जी, आप कैसे हैं?
1: हम भी ठीक हैं सर।
0: और भाई जवाब क्या है बता दीजिए।
1: ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ।
0: हाय हाय क्या बात है, बहुत दिनों बाद आते हैं, सिर्फ आप अंतरा मस्ती में ही दिखाई देते हैं, बाकी और जगह गायब।
1: ऐसा टाइम नहीं मिल पाता सर, दिन में काम करते हैं ना, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए।
1: हाँ तो बड़ा अब टाइम मिलेगा तो आप हर शो में जुड़ेंगे आपके।
0: जी बिल्कुल, तो बताइए यानी गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: गाना उसका सुहाग मूवी का है, मैं देखूं तुझे तुम ना देखो ऐसी भी चाहत ठीक नहीं।
0: वे है, क्या बात है, क्या गाना लेके हैं, सुनवाते हैं। ये गाना मुझे बेहद पसंद है।

0: अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, कहां जान फसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया। कैसा सीधा साधा मैं, कैसा भोला भाला, अरे कैसा सीधा सीधा मैं, कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखों से पला, मीठी छुरी से हुआ हलाल।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने की बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

बिल्कुल, और इस बार फिर एक बार आ चुका है बारी नाहिद अंसारी जी का, और सोनू गौतम जी हैं, और और और, और यानी रूपचंद गोयल जी हैं, और दिगंबर जी हैं, और पूजा भास्कर जी हैं, और बी के टेलर जी हैं, प्रियंका जी हैं, अस्मिता गोप जी हैं, फोकन विश्वास जी, एमडी फैज जी हैं, प्रमोद जी हैं, नीलेश जी हैं, सर्वजीत चटर्जी जी हैं, राधाकृष्ण गोप जी हैं, और एक साहब और भी जुड़े हैं, क्या नाम है भाई इनका, नाम है यानी शिवरेंद्र कुमार पाल जी। अच्छा, शिवरेंद्र कुमार पाल जी का भी

0: और संध्या पटेल जी का भी जवाब सही है, अशोक पाल जी का भी सही है, बाकी दोस्तों का गलत भी है, तो उनका नाम मैंने नहीं लिया है। सीधे कॉल लगाता हूँ नाही दसाई जी को। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो, आज बनी है विनर, आज के विनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो नाहिद अंसारी जी।
1: थैंक यू सो मच।
0: फर्स्ट राउंड में तो नहीं, लेकिन सेकंड राउंड आते आते विनर बनी ही गई। चलिए बधाई हो, अब कोई भी गाना सुन सकते हैं, बताइए क्या सुनना है।
1: नहीं, मैं वही गाना सुनूंगी जो मैंने भेजा है।
0: अच्छा ठीक है, ओके वही सुनाऊंगा, लेकिन जवाब बता दीजिए, जवाब क्या था?
1: जवाब एक मिनट
0: बता दीजिए।
1: खाई के पान
0: बनाने वाला, ठीक है, एंजॉय कीजिए।
1: खाई के पान बनाने वाला,
0: एंजॉय कीजिए, धन्यवाद,
1: थैंक यू।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: हमने उदासियों में गुजारी है जिंदगी, लगता है डर फरेब बेवफा से कभी कभी, लगता है डर फरेब बेवफा से कभी कभी। ऐसा ना हो कि जख्म कोई फिर नया मिले, ऐसा ना हो कि जख्म कोई फिर नया मिले। अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: वेलकम बैक, वेलकम बैक। और हमारे पास सबसे पहला जो मैसेज पहुंचा इनका है, रास्ता देखना पड़ेगा मुझे, ये यानी कि पूजा भास्कर जी का है। और पूजा भास्कर जी के बाद एमडी फैज आलम जी हैं, नाहिद जी हैं, और सोनू गौतम जी हैं, और रूपचंद जी हैं, दिगंबर जी हैं, हमारी नंदनी माँ जी हैं, और संजय पटेल जी हैं, बिट्टू कुमार जी हैं, और सुनीता गोप जी हैं, और राधा कृष्ण गोप जी हैं, और सर्वजीत सेठी जी हैं। मतलब इतने दोस्तों का बिल्कुल सही सही जवाब आया हुआ है, तो कॉल लगाते हैं सीधे पूजा भास्कर जी को। पूजा भास्कर जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है अंतरमस्ती के सेकंड राउंड में। क्या हुआ, कॉल डिस्कनेक्ट एक बार। नेटवर्क नहीं है, फिर से दोबारा कॉल लगाते हैं, देखते हैं। हेलो हेलो हेलो।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, आपका बहुत बहुत बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मस्ती के सेकंड राउंड में। और कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छी।
0: ओके, तो इसका जवाब बता दीजिए। जी,
1: दिल की आज थी कोई दिल रुबा मिले।
0: ओके, और गाना कौन सा सुनना चाहती हैं आप?
1: गाना कोई अपने मन से सुना चाहिए।
0: मैं अपने मन से कौन सा गाना सुना चाहिए बता दीजिए।
1: कोई सा भी आपकी पसंद अच्छी होती।
0: मेरी पसंद तो मुझे अभी यहाँ पे एक ही गाना
1: गहरा हुआ।
0: चलिए सुनवाते हैं गहरा हुआ, सुन लीजिए।

0: ओके, और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुस्वा, उल्फत में मेरी रुस्वा, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं।
2: दोस्तों, आपने सुना अंतरा। अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है किन का, जैसा देख लेता हूँ, हमारे अंचल कुमार जी का है। ओके जी, अंचल कुमार जी और आरजे सोनी जी हैं, और सोनी गौतम जी हैं, और बिट्टू कुमार जी हैं, संजय सानी जी एमडी फैज जी हैं, संजय पटेल जी हैं, संस्कृता गोप जी, दिगंबर जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं, नंदिनी माँ जी हैं, और एक साहब और भी है, क्या नाम है इनका, नाम तो मुझे नहीं पता चल रहा है भाई, नाम बता दीजिए, अंत में नंबर है 96596, नाम बता दीजिएगा अपना तो अच्छा रहेगा। और सर्वजीत शेट्टी जी हैं, और यानी कि प्रियंका जी हैं। ओके, तो सीधे कॉल लगाते हैं हमारे अंचल कुमार जी को। जी बहुत बहुत वेलकम है अंचल कुमार जी, कैसे हैं?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते,
1: का चेक रहते हैं सर,
0: वो हमको पता है,
1: और अभी काम भी कर रहे हैं, चरखा चला रहे हैं।
0: अच्छा,
1: और रेडियो हॉट स्टार सुन रहे हैं,
0: क्या बात,
1: इस बार जवाब भी दिए हम।
0: हाँ,
1: अभी
0: तो मुझे लगा कि आपने जवाब दिया है। जी बिल्कुल
1: जी, पहली बार दिया, फर्स्ट भी आ गया।
0: और पहली बार आपने दिया, सबसे पहले एक नंबर पर दे दिया है, क्योंकि बहुत लोग को समझ में आता है कि भाई हमारा एक नंबर में क्यों नहीं आ रहा है। भाई आप पहले दोगे तब ना आएगा एक नंबर में, है कि नहीं? जो जहाँ पे रहता है, जो जहाँ पे जवाब देता है, मैं उन्हीं का नाम लेता हूँ। मुझे मुझे क्या मिलेगा इसमें, मतलब इन बेईमानी करके आपको तो गाना ही ना सुनाना है मुझे, है कि नहीं?
1: जी जी,
0: वो चाहे आप ये, मतलब इन किसी का भी है, हमें उनका गाना प्ले करना है, दैट्स ऑल।
1: फर्स्ट आएगा उसका नाम तो आएगा ही।
0: जी जी जी, ओके ओके, तो फिलहाल बता दीजिए अब जवाब।
1: जवाब, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों।
0: बिल्कुल, और क्या सुनना चाहते हैं?
1: गाना धीरे धीरे मलम करो बात, ये ढाल। अच्छा, फिल्म का है सर।
0: ओके, एंजॉय कीजिए
1: ये गाना सर, कल हम सुबह में ही सुने थे।
0: अच्छा, एंजॉय कीजिए।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: क्यों हो तुम शर्माई हुई सी, लगती हो कुछ घबराई हुई सी, ढलका हुआ सा आंचल क्यों है, ये मेरे दिल में हलचल क्यों है, मेरे सवालों का जवाब दो।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

ओके, और इस बार सबसे पहले मैसेज मेरे पास पहुंचा है आरजे सोनी जी का। ओहो, क्या बात है। उनके बाद अंचल कुमार जी हैं, रूपचंद जी हैं, रवि महाड़े जी हैं, एम डी फैज जी हैं, दिगंबर जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं, और कोकन विश्वास जी हैं, सरोजी चंडी जी हैं। कॉल लगाते हैं सोनी जी।

0: बहुत बहुत वेलकम एंड बधाई भी हो कि आप आज के विनर बन गई हैं।
1: थैंक यू।
0: तो अब कोई भी गाना सुन सकती हैं क्योंकि कुछ भी।
1: तो मुझे गाना सुनना है अरिजीत सिंह का है अजीबो गरीब।
0: अजीबो गरीब, अजीबो गरीब। मैं आज मुझे लगता है कि मैं ये पहली बार सुनने वाला हूँ।
1: ये गाना मैं सुबह से सुनना चाहती हूँ लेकिन समय नहीं मिल रहा है।
0: अच्छा, सुबह से सुनना चाहती हूँ, समय नहीं मिल रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अभी आपको सुनने को मिल जाएगा अजीबो गरीब। अजीबो गरीब गाना अजीबो गरीब मिल जाएगा। ओके जी, फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए और उस गाने को मैं

0: सच में गाना जीवो गरीब है यार, मजा आ गया। लेकिन इसी बात में मैं सवाल करना भूल गया, ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा,
2: तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरी गीतों में तुझे ढूंढी जग सारा।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहिए।

वेलकम बैक। और इसका जवाब सिर्फ मेरे पास एक ही आया है, वो भी आरजे सोनी जी का ही आया है जवाब। लेकिन आरजे सोनी जी, अब आपको रिकमेंड करना पड़ेगा कि मैं आपके बदले, मतलब यानी किसको कॉल लगाऊं या किसके पसंद के गाने को सुनवाऊं, क्योंकि आपका यानी 3 हो चुका और आप विनर बन चुके हैं। तो अब आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा कि मैं आपकी तरफ से मैं किसको कॉल लगाऊं या यानी कि किसके पसंद के गाने सुनवाऊं। ओके, तो मुझे जल्द से जल्द मैसेज कीजिए। फिलहाल मैं एक अपनी पसंद के गाने को प्ले करता हूँ। इंजॉय कीजिए आप सभी दोस्त।

और अब आ रहा है जवाब हमारे यानी कि दिगंबर जी का। ओके, तो दिगंबर जी को ही मैं कॉल लगाऊंगा।

0: ओके तो दिगंबर जी को मैं कॉल लगा लेता हूँ जल्दी से। दिगंबर जी बहुत बहुत आपको बधाई हो।
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं?
1: ठीक है, सुन रहे हैं आपका शो
0: जी। तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करना वाले हैं, क्या सुनने वाले हैं?
1: एक गाना गूंज रहा है भोपड़ी में, मेरा नाम सलमा सलमा।
0: अच्छा, आपका नाम सलमा है।
1: ये सुनना चाहते हैं?
0: आपका नाम सलमा है। बोलिए जी।
1: इसकी कड़ी बहुत अमन सर जी।
0: जी जी,
1: इसकी इसका अंतरा बहुत गजब का, मैं तो इससे प्यार करूंगी।
0: अच्छा ओके,
1: गजब का अंतरा।
0: कोई बात नहीं, तो मैं जरूर आपको सुनवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो आपका नाम मतलब नहीं, आपका नाम ये बताइए कि आपका नाम यानी कि सलमा है या दिगंबर सिंह है?
1: मेरा नाम तो दिगंबर सिंह है, जनानी का नाम सलमा।
0: अच्छा, गाने का बोल है मेरा नाम सलमा। अच्छा ओके, मुझे लगा ना कि आपका नाम सलमा है।
1: मूवी का नाम आपके साथ का
0: जी, आपके साथ का है बिल्कुल। वो तो गाना मेरे दिमाग में भी है, लेकिन हाँ मिल गया है गाना, मुझे मिल गया आपका। ओके
1: ठीक,
0: ओके एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।

0: ओके, ये रहा अंतरा।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: दिल कहता है तू है यहाँ, तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवानी दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या?
3: दोस्तों, आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

इस बार मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है रवि मोहाड़े जी का। ओके जी रवि मोहाड़े जी, और उनके पास है अंचल कुमार जी और पूजा भास्कर जी, रूपचंद जी, एमडी फैज जी हैं, और सर्वजीत सेठी जी हैं। ओके जी, और ओके जी, तो फिलहाल कॉल लगाते हैं।

0: रवि मोहड़े जी बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मस्ती के सेकंड राउंड में, और फर्स्ट राउंड में तो गायब थे आप।
1: जी जी, थोड़ा सा कहीं चले गया था सर जी काम से।
0: कोई बात नहीं, लेकिन आपका नंबर आ गया सेकंड राउंड में, आज क्या बात है। हमेशा तो स्पेशल कॉल में आता है, लेकिन अभी नंबर लग गया।
1: जी जी
0: बता दीजिए।
1: जी वो मेरे को गाना याद था ना, चेहरा है या चांद खिला है जुल्फ गनेरी शाम है क्या।
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका, लेकिन गाना कौन सा सुनना चाहते हैं
1: सर? ये दिल ने इकरार किया का सुना दो तो, बड़ी दिन से इच्छा है मेरी ये सुनने की रेडियो हॉट स्टार।
0: बताइए वो कौन सा गाना।
1: मैं लिख के भेजा हूँ, मैं ये ऐलान करता हूँ, सरे बाजार कहता हूँ।
0: एंजॉय कीजिए
1: जी। थैंक यू सर,
0: वेलकम।

0: ओके, तो अगला सवाल भी कर लेता हूँ मैं।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। उसकी नजर पलकों की चिलमन से मुझे दिखती, उसकी नजर उसकी हया, अपनी ही चाहत का राज खोलती उसकी हया, छुप के करे जो वफा ऐसा मेरा यार है। हो
2: दोस्तों, आपने सुना अंतरा। अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

0: ओके, अगला बार हमारे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है यहाँ पे अंचल कुमार जी का, रवि महाड़े जी का, और अच्छा रवि महाड़े नहीं यानी कि पूजा भास्कर जी का, अरूप चंद जी का, एमडी फैज जी का और सर्वजीत शेट्टी जी का। तो सीधे कॉल लगाते हैं अंचल कुमार जी का। अंचल कुमार जी, एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है आपका, जवाब बता दीजिए।
1: जवाब है पहला पहला क्या है।
0: ओके, सही जवाब है। और क्या सुनना चाहते हैं?
1: गाना सुना दीजिए, फिल्म झूठ बोले कौवा काटे से ही, और यही गाने का बोले सर, झूठ बोले कौवा काटे, अनिल कपूर और जूही चावला की फिल्म सर।
0: अच्छा, देखता हूँ मैं झूठ बोले कौवा काटे का मिलता है। वो तो हमको वो मिल रहा है, झूठ बोले कौवा काटे। एक काम करते हैं,
1: लिंक है क्या सर?
0: एक मिनट सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए। एक मिनट, ये वाला गाना, झूठ बोले कौवा काटे।

0: फिलहाल झूठ बोलने दीजिए और कौवा को काटने दीजिए, तब तक आप सवाल का जवाब देते रहिए।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, हर पल मुझको तड़पाता है, मुझे सारी रात जगाता है। हर पल मुझको तड़पाता है, मुझे सारी रात जगाता है। इस बात की तुमको खबर नहीं, ये सिर्फ तुम ही पे मरता है।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: है जी?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा अपना सही हो
0: जी? हम भी ठीक हैं, आप बताइए।
1: ठीक है सब, आज छुट्टी में तो पूरा एंजॉय ले रहे हैं घर ही पर।
0: अच्छा,
1: इसलिए और सब?
0: और सब ठीक है,
1: बताइए क्या?
0: जी जैसे जवाब बता दीजिए।
1: जवाब था वो साजन फिल्म का गाना था।
0: आप क्या सुनना पसंद करते हैं, मतलब उसका जवाब बताइए।
1: साजन फिल्म का वो गाना था।
0: तो ये कैसे होगा?
1: लिखे हैं
0: आप वहाँ देख के बताइए। आप देख के बताइए।
1: अच्छा मेरा गाना लिख लीजिए ना।
0: अच्छा गाना बताइए।
1: प्यार बिना क्या जीना,
0: प्यार बिना क्या जीना,
1: कुमार सानू और अलका याग्निक।
0: अच्छा प्यार बिना क्या जीना, ओके ठीक है, ये तो मैं आपको सुनाएंगे, लेकिन आप अपना जवाब।
1: मेरा दिल भी कितना पागल है।
0: हाँ बिल्कुल सही जवाब है। हाँ ये आपका जवाब सही हुआ। तो चलिए, और लेकिन आपको आपको मैं सुनाऊंगा प्यार बिना क्या जीना, है ना?
1: हाँ प्यार बिना क्या जीना, कुमार सानू अलका याग्निक।
0: ओके ओके ओके, मैं जरूर सुनाऊंगा आपको ये गाना। आज नेटवर्क बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है यार, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया नेटवर्क से, क्योंकि नेटवर्क है ही परेशान कर रहा है। इंजॉय कीजिए गाने को।
1: मौसम खराब है ना।

0: और ये रहा अगला सवाल,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। पास आऊं जो मैं, दिल ये डरता है क्यों, दूर जाएगा तू ऐसा लगता है क्यों, मैंने वादा किया मैंने ली है कसम, उम्र भर ना कभी प्यार होगा ये कम।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

0: और इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए अगला सवाल मैं कर लेता हूँ। लास्ट सवाल,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। मिले ऐसा लड़का जो नींदे उड़ा ले, जो पलकों की छाँव में मुझको बिठा ले। कहाँ मेरी जानी जिगर है, ना जाने कहाँ है किधर है। ये कैसा गजब का शहर है, अकेला हूँ लोगों का डर है। मैं हूँ एक कुमारा, कुंवारी चाहिए, दिल को जीत ले जो वो जुवारी चाहिए।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: बिल्कुल, इसका मेरे पास मात्र एक ही जवाब आया हुआ है और वो है रवि मोहरे जी का। सुनवा, इन्हीं को कॉल लगाते हैं सीधे। जी रवि मोहरे जी, सिर्फ आपका ही जवाब आया हुआ है।
1: जी जी, बाकी इसका आंसर है पैदल चल रहा हूँ गाड़ी चाहिए।
0: हाँ,
1: और अकेला मिस्टर खिलाड़ी खिलाड़ी चाहिए।
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो आप क्या सुनना चाहेंगे ये भी बता दीजिए।
1: सर एक भोजपुरी सॉन्ग आपकी पसंद से सुनवा दीजिए, आपकी कोई भी पसंद सुनवा दीजिए, मुझे अच्छी लगती है।
0: भोजपुरी गाना, भोजपुरी गाना आप ही बता दीजिए, मैं सुनवा दूंगा।
1: नहीं सर, आपकी पसंद अच्छी रहती है। अभी एक बीच में आपकी पसंद से सुनवाया था, बहुत अच्छा सुनवाया था आपने।
0: अरे वही भोजपुरी मैं सुनवाऊंगा, मुझे भोजपुरी गाने अच्छे लगते हैं। लेकिन आप चलिए ऐसे सुनवाता है, एक करेजा सुनवा दूं।
1: जी जी सुनवा दीजिए सर।
0: मैंने आपको, मैंने अगर आप बोलिएगा तो, या अगर आपको कोई और पसंद हो तो बता दीजिए,
1: फिर वो सुना दीजिए सर। जीना क्या जी चार दिना, जीवन के यही चार दिना।
0: क्या मतलब, जैसे फिर से जीना।
1: जीना क्या जी चार दिना, जीवन के, जीवन क्या जी प्यार बिना। ये
0: क्या
1: बताता,
0: क्या है प्यार बिना।
1: जीना क्या जी चार दिना ये फिल्म है। किशोर कुमार आशा भोसले ने गाया है सर ये, ऋषि कपूर भी है।
0: ओके तो चलिए, मैंने आपको सुनवा दिया फिल्म धन दौलत का ये गाना।
1: जी जी जी हाँ, धन दौलत बहुत अच्छा गाना है।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार
1: नमस्कार, कैसे हैं?
0: ठीक है, ठीक का दौर।
1: ओके जी, तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
0: पहला पहला प्यार फिल्म।
1: अच्छा अच्छा।
0: सावन का महीना लगी है ये झड़ी।
1: अच्छा,
0: झड़ी देखा ना।
1: ओके, एंजॉय कीजिए।
0: ये थैंक यू।

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।
1: ए टोनी फर्नांडिस बेबी

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरूर, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरी, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद अब पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: प्यार तो करता हूँ जरी, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
1: प्यार करते हो ना?
0: पर जरी तुम
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: रोजी, ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है, वो
2: वो क्या?
0: ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो-यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: देख यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप

पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: गारे गारे
1: गड़बड़ जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गारे गारे, गारे
1: ये हमको को बटवा
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो ये कचतुर नार।

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा, एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना गा।
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम मर

झोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए

0: सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
1: ओए चन जी जरा मुड़ के तो

0: खिड़कियों से झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया।
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।